आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं बोलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। सहनशीलता के देव व देविया होना हो। सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, कोई गाली देता है रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचरा है ना? क्या अच्छी चीज है? किचरा है ना? तो आप लेते क्यों हो? किचरा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचरा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों? थोड़ा तो ले लेते हो, थोड़ा थोड़ा ले लेते, पीछे पीछे सोचते हो नहीं लेना था, अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना, तो अपने शायद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

work.

si quieren.

Rat Pele. उन सिकिला दे बच्चों को।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृत्त कैसी भी है कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना अभी आवश्यकता है, रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको भी बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से

0: संकल्प दोनों के मूल्य को जान। समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म को में सफल करने से अनेक जन्म वोट की प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Son.

विश्व

Bobby. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

साइलेंस की शक्ति की सकाश

सरकम टनसनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक की नहीं होगी तो किस में जमा करेंगे। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने जाओ उतना कर सकते। वैसे भी जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे ये करना था सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाए। इसलिए बाप दादा पहले से ही

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। समझते हो ना, तो मौज के बजाय मौज जाते हो, हम मौजना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे, हाँ, नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे हैं सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए आता ये अपना टाइटल याद करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

Каждый день.

Saying.

ضروری، کیونکہ سب سے شریشت اتارٹی

Farofa banana. Yay, Brahmarchi.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

course.

Yes.

Usadas.

Sí, que nada, canales.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

voll.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। ये बेफिक्र अच्छा।

कि हर एक बच्चा

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स चौथा हाल तो टीचर्स है,
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: टीचर्स को

dziecko.

Hip-hop.

0: parte quieta, Cardiana.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वरूप धारणा स्वरूप

मन सा जय वाचा जय कर्मणा जय समन संपरक हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे इसको कहा जाता है चारी सब्जेक्ट में अनुभव सो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रत भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छे पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लो, उसके गलती को सामने नहीं लो। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संघ दोष में बहुत दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संघ का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संघ दोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संघ दोष में आ जाती है टेम्पटेशन है, संघ दोष में नहीं हो। Yeah. बाबा, कहता है मेरा बाबा और करता क्या, इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को, साफ दिल मुराद हासिल करके देखो, दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा दिखते हैं, माता जय पांडव। बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Fish.

0: जब आत्माओं को सने से सम्मान देते हो, वास्तव में किसी को भी
1: परिवार का बच्चा है।

0: சர்வகுண சம்பன்னா சேஜ் ஜெயதேவ்
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: खुशी देगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरों को भी

Slimko. Harto Slimko.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में बिठा। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों की सरकमस्टेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सकेंगे। कुमारिया चतुर होती है, भोली भाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं सोनती में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण के भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना, योग्य टीचर सजेस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली है? अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। शक्तियों की, सर्व गुणों की,
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: कुछ उतर जाए तो अच्छा है या है क्या? वाह बहुत उतरा, हाय मेरा पार्टी है सर, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी मेहमान करते हो तो वाह-वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह-वाह कहो, हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या है, क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगे, मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पासे तो रूप में देखो, नेकेटो से पासे तो करना तो आता है ना, कोर्स भी तो कराते हो ना, नेकेटो पासे तो का कोर्स कराते हो, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाए, मुश्किल डिक्शनरी में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में शब्द नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है प्रकृति से है या शरीर से है, यो प्रकृति भी कई बार मुश्किल अनुभव कराती है। ये पांच तत्व कोई भी हिसाब किताब शोक अग्नि में पसंद कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

उससे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता है। का भूत वाला भी फोटो है, देखो एक यादगार भी है भूतनाथ। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे पका रही है, ये खेल भी देखती रहती। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प पाता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करे। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा सबक सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है, बुरा लगता है नहीं। अच्छा तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं, बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से, क्या है सबको देख लिए, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे, अभी महारथी जब बदलेंगे ना हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पासवित आनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया, हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना। ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज परिवार राज अधिकारी आत्माओं के सभी संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तन कही विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन, देते चलो तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय बनने का प्रारंभ होता है, इसलिए हिसाब नहीं करना इसने ये किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दादा बन गिफ्ट जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से ये शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक कहो या दुआएं कहो वो अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो ऐसा समान संपर्क में आओ जो दिल से मौका से मुबारक निकले वह दुआएं निकले। ऐसा शब्द निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
5: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी दिल था धाम तुम्हारा। दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से पाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह। स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुने पाप का सुने परिवार का सुने सुतई बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार सने

Sunil. वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे? सनई का वायुमंडल एक एक को देख के चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना। परिवार का तो है ना। गिरे हुए उत्साह बढ़ाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल किया। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएंगे, आएंगे ना हंसी, हंसी आएंगे ना, तो जो किट किट करती हो ना, वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

विशेष परमात्मा
çok

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जगत

Catching power. Catching power. बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं।

Mitchell.

This is summer.

say it. It's casada, man.

दी जाएंगे। और सेकंड में

Será?

Sleep.

सेवा करो, लेकिन शांति के शक्ति सब

Jätteintressant. Jag är det och se att det

0: जमा करने का।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

जैसे बिजली का कनेक्शन।

देंगी, न बर्फ़ नहीं बनने देंगी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

味しい。

0: பரம்தாம்.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत रीजा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Cricket Bacha.
1: बच्चों को देख खुश होते हैं।

0: में चेंज कर देना, मेरा तेरा।
1: जुदा ना थे ना जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे ना विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना। कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान के सीट स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रह नहीं है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दे। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिल के कोई ना कोई अरमाज के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले, ये तो बाप समान, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूर्त है, जैसे बाप के लिए कहती है ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के कदी आप टीचर्स को दिए बैठने के लिए, मुरली सुनाने के लिए निमित टीचर्स बाप की गद्दी मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्द पा दिया। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते, महानों महत्व वाले है ना, ऐसे ऐसे है। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेवे सर्टिफिकेट बाप दादा तो देखते रहते क्या बकरी, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरी हुए को क्या बकरी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या
2: सब्जियां कितने मजे से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Aşağı.

Şıktı o duvara. Sakaştı. Cesiz.

ಇಚ್ಛಿಸೋ ಪರಿವರ್ತನೆ.

So.

अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

ese pato se mordido de lado.

Cierta. Sacaştenki. Siede. Sightseeing.

0: साइड से देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा, आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की, कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक। आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण नहीं बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और बाप को भी

Навальто є, і я пацюки дельми баба. Baba, till we go.

0: 같이 시사만든 쌍감유각이 소가하네.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुना

小王。

めっちゃ真っ赤な家一家だよ。どうすら

और सदा संतुष्ट।

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य

जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

Sova.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Last number, please.

last.

0: sabse pyare. Aise samajhte ho ya question uthta hai ki mere se pyare hai ya kam hai? Baap dada ka pyar har ek bacche se समझते हैं मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है मेरा कम है, ऐसे समझते हैं हर एक, यही कहते हैं ना मेरा प्यार है मेरा प्यार है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। कौनो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरे एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक तो, एक मास वाले को भी एक ही। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं मर्यादाएं और इंडिया की और ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या है? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम? ऐसे है नहीं है, फिर क्यों? सफलता को देखा कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो ईर्ष्या जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करती है लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, लेकिन कई बार बच्चे दिमाग चूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किसमें मेरे कोई नुकसान है, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किम्या और सिक्किया, किम्या रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किम्या और सिक्किया साथ साथ हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी अपन ने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो है वो आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन स्वा नहीं करते हो योग अग्नि में, और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है ना बात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दस वाली मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष में पाप दादा हर बच्चे से मुक्त देखने चाहती है, मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शस्त्र है, विकार नहीं है, लेकिन

एक आत्मा की संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके पाप के नाम की बहुत गिलानी होती है। कहने वाले स्वरूप ईर्ष्या द्वेष घृणा अंतर में होती है उसके स्वरूप में बाहर से जोर से बोलना या बाहर से रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जैसे बाहर क्रोध होता है तो अगर रूप है ना क्रोध चलता रहता है अंदर खुद भी और दूसरे को भी चलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा जिसमें अंतर है वो अंतर इस अग्नि में चलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ
2: सेवा की।

0: उस समय मेहनत करनी होती है, नेचुरल अनुभूति होती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Revise.

Action.

очина.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: Avke to dil mein shubha bete dilaram hare ke dil ka dilaram aur ye dil ke dilaram se sada amrit और मुबारक देते रहना, ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे, मेरा बाप कौन पहचानते नहीं है ना, तो उन्हों को पहचान स्वयं बाप बेटे। इसका यादगार या आपो में ही दिल वाला मंदिर तो सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रह माना चाहिए। कितना पुकारे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो। कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय परवान रहम के मास्टर साहब

ausfallen. Bin a leidski.

0: चिल्ली की
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Red Sun.

我叫个叫电线没停电呢、啊、都输起电阿比阿比一时不接Jenga.

yummy tension both butter. So I've got tension free. Ka anubhav. Tension freaky. Chalan aur chehra. Ono ke aage. Ek. Aadhar murat banega. चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश कर

0: Den Fanongo. Den Fri. Ka eksempel til kao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
2: Bye.
1: जी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते। तो आप सब भी मन के परेशानी के आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, अबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, बाप दादा ने पहले भी कहा था, ऑनो की वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है क्या होना है फेरो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर some

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्त समृद्ध बनने नहीं देंगे। और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध

0: Krishnamurti tata pandesi. Swim. Ke choti choti baaton se.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी ये चाहते हैं बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है, तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को कलप करने जाओ, वो बंधा हुआ है, योग मेरा है, तो बाप दादा इस

Ciao.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो रोका बनेगा। आप निश्चिंत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मैं जाड़ी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि टेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटो में कोई मेरे बच्चे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका पहले भाई ये मुक्ति प्राप्त कर सकती है, बाबा का भी वरदान है। समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार के सब्जेक्ट नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। हो जाएगा। अटेंशन में आए देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृद्ध ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो तेज आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं हुई हो ही नहीं सकता, कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो

0: होशियारत में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आपके निमित निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनेंगे जो से बदल जाए। कई बच्चे रोरियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने एक मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो पक्के पत्थर जैसी है, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, लेकिन आप तो अपने पोजिशन में रहो ना, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो नहीं बदल जाऊं उसके साथ। दिल शिकस्त हो जाना तो वो पावरफुल हुआ जो आपको तो बदल लिया। आप अपने स्वमान किसी फॉलो करके वाइब्रेशन देते रहो। अभी कोई नरम चीज होंगे, कोई सख्त चीज होंगे, उसको तोड़ने में टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। लेकिन आप क्यों अपनी सीट छोड़ के दिल शिकस्त हो जाते? बहुत प्रकार की अपोजिशन हो जाती, व्यक्ति व्यक्ति में भी अपोजिशन हो जाती। स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती, विचारों में अपोजिशन हो जाती। इसलिए पोजिशन में रहो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jesse Saints. Peace.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं सता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता friend.

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

se apa?

Leon.

0: Chop Chow, Jesse Chow, Chop Tuck Chow, Tap Tuck, Manako, Ikakar, Karsok.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bye.

Pacheco. So

0: você.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता, छोटे छोटे सोचना

0: vietas, poneme vieta. Poneme vieta. Lekken pap kapot purana. Slogan. Yeah.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेज को स्वयं पे मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसर जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो। हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती, लोहा भी बोल्ट बन जाता है। ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट क्या है, जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? खुश हो जाते, चाहे खाने बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को जान से मधुबन संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
2: चल।

0: successful stage. चलना तो पड़ना ही है, परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार, बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना के प्रति से चलना, सब में पास।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। सीरियस नहीं चेहरा करना। क्या करें कैसे करें तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। चलचित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संग

डिस्कोटेक करके। कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये

角，都切割了一个的命，一年多都没生。

0: अब समान बनना कोई मुश्किल।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों, होते ना तो आप

से मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रैम दिल बनना ही पड़ता है। कहते अच्छा अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे थे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा सर्व द्वारा संयोग

0: some barak maybe. Seva maybe ek to ke saath. Nirman.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी कि आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक बच्चे को जय। इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती, लेकिन वरदान सभी को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हूं, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखना। ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ रंग

消失。

Jessie Bob. Où t'es?

साथ रहने से।

sick.

Ese pavote.

0: Vete, por favor. Puchéllate. Orcoí que pichitra. Ese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसको प्रयास किया है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं आठ में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। दूसरे को सुख देते देते सने देते देते आपके संस्कार भी सने सुखी बने जाने हैं, ये सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी वर्तमान समय

siate però, man, what is unscrupulous.

me vale ese meme. Posso eu ter...

0: समय पर यही अंत सवाली करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता।

0: और सिकात गाड़ी नहीं बन सकते तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का सीट का 5% जीवन का विषय।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Stop.

0: Bellissima. Sat, sat. E chi sa me perdono se va sat. Srap chan smele se va ka. Ye nahi socho.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Silence.

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले, माँ बाप जब समाचार सुनते हैं ये ईमेल है ये है खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला लेकिन बच्चों के पास है। खुश होते सब सेवा का साधन समझ के यूज करना सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते, साधनों के वश नहीं होना लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले, हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप, साधन के पीछे साधना कम नहीं हो, बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है, बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना, जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो, जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो, ये बात नहीं मान।

0: ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके? 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा? है, निकाल सकते हैं? बोलो पांडव, निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी, शिकल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं है, जो चाहे वो कर सक। अटेंशन कम है, जैसे वो अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल। इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है। तो 2 मिनट साधना में लगो, ये हो सकता है, हो सकता है। इससे पूछते हैं गायत्री से, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी। बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। उदी भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए, खुशी होती है ना। खुशी में कभी थकावट नहीं हो, काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो, होता है ना ऐसे? एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार और एक्शन कॉन्शियस की मार में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा? होता है, फर्क होता है। तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रहो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

संकल्प। पूर्ण होने के कारण वृत्ति में दृष्टि में बॉल में संबंध सम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Shove above now.

समान बनने का और लक्षण रहे हुए।

जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Stay.

0: Jadi, det kan godt om jadi og se.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए सभी बच्चों का।

0: sabi. Brahmanoki. Silenski Shakti. Remdel. Pavnatwara. Vasankalapdwara. Halchal ko parivartan nahi kar sakti. Jab karna hi hona hi to is baat par vishesh attention do. Jab aap great grandfather ki bachche aap ke sabhi bratri shakti parivar aap hi
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, लेकिन

Casino.

möchte.

इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप के

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था।
1: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले इनो का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि VIP सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
4: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। Just

Awesome.

0: समय पर तो कर देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे पुरुषार्थ करती है। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सेम कुछ दिमाग बातें का काम है आना, ये भी समझ लो बातें नहीं आएगी, बातें आएगी लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे। अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर, परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्मा विल पावर की आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच उनकी बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है, लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा विज्ञान, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कंबाइन है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइन है फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो? बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना, अकेले बन जाते हो तभी कमजोर बन जाते। कंबाइंड रूप में रहो बाप दादा, हर एक बच्चे के समय सहयोगी शिव बाप परम धाम से आए क्यों है? किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो सेवा में वृद्धि होना, अर्थात खजानों को सफल किया और करें। तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो

0: esquisitie himmat med rena har himmat delarna. Kjo teachersko jo pavki morli sunan.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.